आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूएसीपी की दुनिया एफएम 92.6।

0: मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे।
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: तो वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया।
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको लहूलआब के लिए पैदा नहीं किया।
1: लहू

क्या लोगों ने खुदा को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है, और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि उनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं।

और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें।

0: इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम जल्दी न करो।
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा।
1: लव

0: हूँ।
1: क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमसे पना ही दिए जाएंगे।
0: बल मत्ताना हाउलाई व आबाहुम हत्ता ताला।

0: इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरीह गुमराही में पड़े रहे।
1: कालू अजितना बिल हक अम अंत मिन اللاعبين।
0: वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो।
1: कौलब

أنكروا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئ

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: Phoenix University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक, मैं हूँ सादिया और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आई होप कि जो म्यूजिक ब्रेक थी वो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग रही होगी और हमने भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए मजीद भी अपने पास रख ली हैं। आमना, हम बात कर रहे थे टीचर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहते हुए क्या सिर्फ डिग्री दी जाती है या आपको कुछ स्किल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं?
4: UCP में सिर्फ डिग्री नहीं दी जाती। इसकी एक एग्जांपल है कि जब मैंने 2017 में यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे तो प्रेजेंटेशन भी नहीं देनी आती थी। सो UCP ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो टुडे इफ आई एम अ टीचर बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो डेफिनेटली टीचर्स का है, जिन्होंने हमें सिखाया और पॉलिश किया। प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स होते हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं है, टीचर्स हमें साइड बाय साइड गाइड करते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेके आनी है, कि आपको खड़ा होना कैसे है, आपको ड्रेसअप कैसे करना है, आपको बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है,
3: और आपकी जो सॉफ्ट लैंग्वेज है, आपकी बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, हर चीज पे हम आपको देखते थे। उस वक्त शायद आप लोगों को बहुत अजीब लगता था कि हमारी छोटी छोटी चीजों पर नंबर कट रहे हैं, लेकिन आई होप कि क्योंकि अब आप अपनी फील्ड में हैं तो आपको एहसास होता है।
4: नहीं, अभी आपने बात की तो मुझे आपकी ही क्लास की एक बात याद आ गई। आपने कहा कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपने प्रेजेंटेशन में वियर करने हैं, एंड दोज वर ब्लू एंड ग्रीन, और वो स्टिल अभी भी मैंने उसको कैरी किया है और मैं उसको फॉलो करती हूँ क्योंकि वो मैंने आपसे सीखा।
3: देयर वर वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर्स जो हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि जब आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो अपने आप को छुपाएं और अपना चेहरा और अपनी बात के अंदर वजन रखें, ताकि आप प्रेजेंटेशन सुनने वाला वो आपके कपड़ों में ना खो जाए, वो आपकी बात को सुने। सो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज अगर आपने याद रखी है तो मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी स्किल एनहांसमेंट पर काम होता था, जैसे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स यहाँ होती रही हैं, बहुत से इंटरनेशनल सिंपोजियम हमने करवाए, वेबिनार्स करवाए, आपका एक्सपोजर उनमें कैसा रहा? मतलब मोलेक्युलर की जो टेक्निक्स हैं, एक तो हम लैब में सीख लेते हैं, क्या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टेक्निक्स थी जो डिफरेंट टूल्स की जो कि आपने UCP में दौरान डिग्री सीखी और अब वो आपके बहुत काम आती हैं?
4: जी बिल्कुल, मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क नहीं किया यहाँ पे, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और हमारे अपने टीचर्स करवा रहे हैं, मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और मैंने बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर्स और टूल्स सीखे जो कि करंटली मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी रिसर्च में। इवन विद लेस रिसोर्सेज आपको समटाइम्स होता है कि मैं रिसर्च नहीं कर सकती, तो आई हैव दो स्किल्स जिसको मैं अप्लाई करके आज भी एक एक्टिव रिसर्चर या प्रोडक्टिव।
3: जैसे कि AI और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बहुत करीब हैं। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद, जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे सुपरवाइजर हमें कहते थे कि बायोटेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इवन कंप्यूटर साइंसेज, अब तो AI, और हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स के ऊपर हम स्टेम पे, स्टीम पे हम कितना काम करते हैं। तो ये आगे चल के आपको क्या लगता है कि अभी जो बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट हैं या जो चाह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ AI की तरफ जाएं, आपको लगता है कि सिर्फ AI या कंप्यूटेशनल स्किल्स को सीखने से हमारा वो गैप जो कि हेल्थ सेक्टर में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, क्या वो फिल हो पाएगा? अगर आप पास बिल्कुल बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज को पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा इमल्जन नहीं है, और बेहतर ये है कि आप बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ें एंड देन कंप्यूटर्स को या AI को जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को साथ रिलेट करें और फिर उस गैप को फिल करें, तो क्या सिर्फ AI की तालीम लेना काफी है? क्या इसको इमर्जन करना साइंसेस के साथ जरूरी नहीं है या जरूरी है?
4: मुझे लगता है कि साइंसेस के साथ इसको कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जितने भी फील्ड्स हैं दे एक्चुअली रिप्लेस्ड, उनकी जॉब्स खत्म कर दी हैं AI ने, स्पेशली आप देखती हैं ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के लिए लोग कैनवा या दूसरे टूल्स को यूज नहीं करते, दे जस्ट गो एंड कमांड देते हैं वो AI को और आपकी पिक्चर जो भी है वो बन जाती है। फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। सो इन कमिंग एरा जो है वो AI जो एक कंप्लीट डिग्री का नाम टाइटल दे दिया गया है, स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग टू रश, इनकी भी जॉब्स नहीं होंगी, तो हमें जो है वो इसको लिंक करना चाहिए विद द साइंसेस, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट जो है उसके पास एक ब्रेन है जो कि ह्यूमन ब्रेन है, जो कि कंप्यूटर के पास नहीं है। हम AI से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट उसको रीड करना और उसको अप्लाई करना एक ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। तो ये साइंस के साथ इसका लिंक जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी।
3: और मैं कहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का भी रिसेंट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने, मैं आपको उसको उस पर थोड़ा बताऊं और अपने सुनने वालों के लिए एक बड़ी जबरदस्त एक इन्फॉर्मेशन होगी कि हमने जो फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स के

0: अब हमसे सबने ये सवाल जरूर किया था कि आप लोग क्या करेंगे। सो हमने वहां उनको बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक साइंस है, हम ब्रेन है और इसको कम्युनिकेट करना है। जैसे अभी हम रेडियो के थ्रू आपसे मुखातिब है, तो अगर हम टीवी के ऊपर साइंस को कम्युनिकेट करें इन अ वर्बल फॉर्म रादर देन इन द पब्लिकेशन, दैट इज मोर वायबल। सो वी वॉन्ट दैट ग्रांट। और हमारे बच्चे अभी उस मशरूम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वो भी एक एनवायरमेंटल, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेक्ट एक एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी भी है, उस पर भी हम आ रहे हैं। इसी तरह हमने क्लाइमेट चेंज को हिट किया, हमारे पास एमएस क्लाइमेट जो चेंज है, सस्टेनेबिलिटी है, उसकी डिग्री है, एमएस फोरेंसिक साइंसेस है, एमएस बायोटेक्नोलॉजी है, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बेसलाइन है जिसपे हम अपने स्टूडेंट्स को खुले दिल से वेलकम करते हैं, वो हमारा बीएस प्रोग्राम है जो कि टोटली इक्विप्ड है और आपको हर तरह के फैसिलिटेट करता है। और आप भी एक्चुअली बीएस टू एमएस उस लेवल के ऊपर गई। अब ना यहाँ मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जब एक दफा 4 साल बीएस कर लिया था तो फिर एमएस में दोबारा यूसीपी क्यों?
1: क्योंकि बीएस में मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सीखी, मुझे लगा कि कुछ स्किल्स रिमेनिंग है अभी भी, मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने होम ग्राउंड जाना चाहिए और उन स्किल्स को भी सीखना चाहिए।
0: और तो आपने बाकी कंपैरिजन किया होगा और यूनिवर्सिटीज का?
1: मैंने अप्लाई किया हर जगह पे, जीसीयू में मेरा एडमिशन हो भी गया, बट स्टिल आई चूज यूसीपी फॉर द एमएस। और जब मैंने फर्स्ट डे मेरा मास्टर्स का था और जस्ट आई एंटर्ड द गेट, और मेरे माइंड में एक गोल था कि लास्ट टाइम तो फ्यू पॉइंट से मैं मेडल नहीं ले सकी, इस दफा आई विल अचीव इट।
0: आप का मेडल नहीं था?
1: मेडल नहीं था, सीजीपीए 3.7 था।
0: अच्छा अच्छा, सो आमना सीजीपीए इज मोर इम्पोर्टेंट या स्किल और जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मैटर करता है?
1: लर्निंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका सीजीपीए 1.92 रहे।
0: नहीं, हमें वो एक ब्रेकडाउन तो हमें रखना पड़ता है, जो कि एचईसी का कुछ रूल है जो कि हमने ग्रेजुएट अपने स्टूडेंट्स को उस पे करवाना होता है, वी आर यूजिंग दैट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और वो कुछ और एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते, तो आपने कहीं गोल्ड मेडल लेकर सिर्फ पढ़ा है या कुछ और भी एक्सपीरियंस किया, सोसाइटीज को दिया और सिंपोजियम देखे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, पेपर प्रेजेंट किए, या सिर्फ बस बुक पकड़ के बैठी रहती थी आप?
1: नहीं मैम, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो हमारे कॉन्फ्रेंसेज हैं वो अटेंड की, हजारा कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी मैंने अटेंड किया।
0: So you travel on the name of UCP.
1: Yes. Very good. And UCP भी जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस करवाती हैं, और स्पेशली वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है उसमें भी मैंने प्रेजेंट किया एज अ पोस्टर प्रेजेंटर और जो ओरल प्रेजेंटर होते हैं, और उससे मैंने बहुत ज्यादा गेन किया एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके इंटरनेशनली बहुत सारे लोग आए होते हैं, स्पीकर आए होते हैं, आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्या स्कोप है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर फर्दर।
0: और मेरा ख्याल है मैंने देखा है कि आपके मोस्ट जो रिसर्च पेपर्स हैं वो कोलैबोरेशन के ऊपर हैं।
1: Yes.
0: हमारे बहुत से यूसीपी के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेशन के ऊपर पेपर्स जो हैं वो लिखे। तो अब हम आगे चलकर इस पर भी हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो इंटरेक्शन है, इंटरनेशनल इंटरेक्शन जो यूसीपी ने आपको दिया, इसने आपको कितना आगे हेल्प किया, और क्लासरूम एनवायरमेंट यूसीपी में और लर्निंग एनवायरमेंट आपका और भी मजीद हम हाईलाइट करेंगे। अब हम चलते हैं मजीद एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ये एक म्यूजिक ब्रेक है, दोबारा आपके कानों को एक सुर और लय आपके कानों तक टकराएगी, लेकिन हमारे साथ रहिएगा, हम आपके मुंतजर रहेंगे। सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की
1: वेलकम बैक सामईन। और आई होप कि आपने जो म्यूजिक सुना वो अगेन आपके लिए बड़ा रिफ्रेशिंग होगा। मौसम भी आज बहुत बेहतरीन है और अब हम तीसरे हाफ में अपनी मेहमान से कुछ मजीद वो बातें सुनेंगे जिससे अब ये सोचती हैं कि इनको दोबारा यूसीपी में दाखला ले लेना चाहिए। और अब हम इनको वेलकम करेंगे फॉर द PhD। आमना, जब आप लोग यहाँ पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे?
2: नहीं, तब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे और ऐसा कोई भी सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स या आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स ऐसी कोई चीज मुझे
1: तो इसका मतलब है कि यूसीपी ने एक फ्लाइट ली हुई है और अब हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं इस चीज के ऊपर। और ये आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट ग्रांट्स अप टू 1 लाख रुपीज और MS या जो सीनियर फैकल्टी ग्रांट है अप टू 10 लाख रुपीज हम लोग ग्रांट भी करते हैं। एक मैसिव हंट होता है, पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट फाइनल ईयर के उसमें अप्लाई करते हैं और टॉप 15 स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं और टॉप 10 जो फैकल्टी मेंबर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से अपने टीचर्स को इक्विप करने के लिए। सो ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप अब भी अपने इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज में देखती हैं, क्या स्टूडेंट्स को इंटरनल ग्रांट्स गवर्नमेंट में भी मिलती हैं?
2: बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप कहाँ देखते हैं कि वो आपको ग्रांट दे रहे हैं और स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता। मे बी समहाउ फैकल्टी मेंबर्स को फंडिंग और इस तरह की ग्रांट
1: यूनिवर्सिटी तो नहीं देती है, वो तो उनको ग्रांट जो एजेंसीज है वहां से हंट करनी पड़ती है। HEC के ऊपर होता है हमारा ज्यादातर।
2: और मैं देखती हूँ काफी एक्टिवली पेज यूसीपी का कि यहाँ पे काफी सारा इनोवेटिव काम हो रहा है और काफी न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं
1: और इसका मेरा सारा सेहरा जो से हमारी अपर मैनेजमेंट को जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका इंटरेक्शन है, बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन है, हमारे यूसीपी के बच्चे और उन तमाम यूनिवर्सिटीज के बच्चों का मेंटल लेवल या उनका जो स्किल लेवल है, आप उसमें कोई डिफरेंस देखती हैं?
2: बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे अगर हम आउटसाइड यूसीपी देखें तो उनकी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, उनको मोटिवेट भी नहीं किया जाता कि कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, ओरल प्रेजेंट करें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो सबसे ज्यादा मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा कि उन्हें प्रेजेंट नहीं करना आता, कम्युनिकेट नहीं करना आता। तो यूसीपी में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली और काफी चीजों को हाईलाइट किया जाता है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ 10 मार्क्स नहीं है बल्कि आपको ग्रूम किया जाता है और साथ ही साथ स्किल्स पे वर्किंग की जाती है, सिर्फ डिग्री नहीं देते।
1: और आमना, आप मुझे भी बताइए क्योंकि आपने गोल्ड मेडल भी आपने लिया MS के अंदर और BS में भी आपका CGPA बहुत हाई था, तो आपने बताया कि आप बिल्कुल ऐसा तो नहीं था कि किताबों में गुमी रहती थी, तो यहाँ हमारे पास 65 प्लस एक सोसाइटीज का पूल है, तो आप कभी इन करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी?
2: Yes, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी। निशा सोसाइटी यूसीपी में मैंने उसको ज्वाइन किया और फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो हमारी सोसाइटी थी उसको मैंने ज्वाइन किया जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा इन थी क्योंकि मेरा शौक था, तो मैंने साइड बाय साइड इन सब करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपने आप को
1: इन चीजों ने आपके लर्निंग में कुछ आपकी मदद की?
2: बहुत सारे लिंक्स डेवलप होते हैं आपके, यानी कि आप अपने सीनियर्स के साथ इन टच रहते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल बनता है, आपके ग्रुप्स होते हैं और किसी भी तरह की हेल्प के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम।
1: और मेरा ख्याल है नेटवर्किंग इज अ की। सिर्फ कार्ड लेके बैग में रख लेना और कहीं जाके सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट कर देना कि हमने वहां गए थे और पिक्चर ली, रादर देन दैट आपका एक कन्वर्सेशन या एक आपका ऐसा लिंक डेवलप हो जाए जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करे, ठीक है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में खासतौर पर, हमारा स्टूडेंट्स को एक बड़ा डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपकी करियर डेवलपमेंट की जाती है। वहां आपकी लिंक्डइन की CVs कैसे बननी है, लिंक्डइन की पोस्ट कैसे लगानी है, आपने सोशल मीडिया को, आपने प्रोफेशनल मीडियाज को कैसे हैंडल करना है, आप इस पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी कि साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को जो हमारी इस तरह की प्रोफेशनल साइट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द TikToks और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द Facebook और अदर चैनल्स, बट दोज यू नो द प्रोफेशनल साइट्स लाइक लिंक्डइन है, ट्विटर है, जहां से आप बाहर के प्रोफेसर्स के साथ लिंकअप हो जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स वहां से हंट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने या कोई करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसमें आपको कितना हेल्प आउट किया?
2: टीचर्स काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकल के आप इन प्रोफेशनल जो आपकी एप्स हैं उनको अपने फोन में इंस्टॉल करें और इनको यूज करें फॉर योर प्रोफेशनल करियर। अगर सच पूछें तो जो मैंने अपनी जॉब हंट की वो मैंने लिंक्डइन से ही की। तो आपका लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल सीवी से पहले जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या जिसके पास भी एचआर पे आपकी सीवी जाती है वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखते हैं।
1: दिस इज समथिंग जो आप बहुत प्रिवेल कर रहा है। यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टैंडिंग इन द सोशल प्रोफेशनल सोशल मीडिया।
2: यस, तो आपकी वो प्रोफाइल जो है वो अप टू डेट रहनी चाहिए ऑल द टाइम। और मैं स्टूडेंट्स को काफी इनकरेज करती हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने कोई एक सर्टिफिकेट भी अचीव किया है मस्ट पोस्ट ऑन लिंक्डइन। ये आपकी अचीवमेंट है। जब तक आप खुद को खुद एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपको कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा।
1: आप ना एक जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चों के जहन पे एक बोझ रहता है कि अगर 2 साल की डिग्री है तो वो 4 साल तक जा रही है, 3 साल तक जा रही है, 4 साल की डिग्री है तो वो भी लटकती जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स का अपना कसूर होता है लेकिन कहीं गैर जरूरी तौर पर यूनिवर्सिटीज भी लटका देती है। यूसीपी के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिग्री टाइम पे खत्म हो रही थी, आपकी डिग्रीज कैसे खत्म हुई, आपके क्लास फेलोज जो आपके साथ थे दे ऑल ग्रेजुएटेड ऑन टाइम या कुछ रह गया?
2: यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इज आउट क्लास। ऐसा नहीं है कि आपका जिस दिन वाइवा डेट है और आपका वाइवा किसी और दिन कंडक्ट हो रहा है। टाइमलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और आपकी डिग्री अगर 4 साल की है तो वो विद इन 4 ईयर्स ही कंप्लीट होगी। सुपरवाइजर अपने जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं स्पेशली वो कोई भी ग्रज बेसिस पे स्टूडेंट का थीसिस जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं करते हैं। वो टाइमली ही फिनिश होता है और कॉन्वोकेशन भी आपकी सेम डे पे होती है।
1: तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म इज द की ऑफ दिस डिपार्टमेंट।
2: यस,
1: और वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इसे इंटरकेट किया है और अपने आप आगे करियर के अंदर इसको भी लेकर चल रहे हैं। आमना थोड़ी सी आप हमें ये भी आप बताइए कि जब हम इतना पढ़ रहे होते हैं, इतना इंटेंसिवली हम लोग चल रहे होते हैं, अभी भी हम छोटी छोटी ब्रेक्स अपने सुनने वालों को म्यूजिक की दे रहे हैं, सो हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने लिए एक लेयर टाइम निकाले और किताबों से हटकर भी इस दुनिया को देखे? और यूसीपी में ऐसी बहुत सी जगह आई नो कि जब बारिश होती है तो हमारी सीनरी और होती है, एक बहुत खूबसूरत सी एक हमारी जो वाइब है हमारे पूरे कैंपस की और बहुत अच्छी जगह है जहां बैठ के जो कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी की पूरी जो पूरी यूनिवर्सिटी वहां आपका बहुत ही पसंदीदा स्पॉट क्या था और लेयर टाइम में आप यूनिवर्सिटी में क्या करती थी?
2: फूड स्ट्रीट एक अच्छी जगह थी क्योंकि एक ओपन है और आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग विद अ कप ऑफ टी आप एंजॉय करते हो, वो मुझे बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ उस चीज को। और लेयर टाइम टू कम्युनिकेट विद फैकल्टी, अपने टीचर्स के साथ। इतने फ्रेंडली फैकल्टी मेंबर्स हैं कि आप कभी भी उनके ऑफिस में जाके बैठ जाए एंड दे एक्चुअली ऑफर यू टी। तो ये बहुत अच्छा
1: टाइम है।
2: यस, और साथ में आप रिसर्च डिस्कशन कर सकते हैं, करियर सजेशन ले सकते हैं।
1: कितनी हर्डल होती थी टीचर को अप्रोच करने में इधर?
2: कोई हर्डल नहीं है। टीचर
1: चलते चलते बैठ जाना और मेरा ख्याल ये हमने यहाँ देखा है, हम चलते चलते बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं।
2: टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग। वो सब स्टूडेंट्स को जो है वो अपने स्टूडेंट समझते हैं और ऑन करते हैं उस चीज को। तो इस तरह की कोई हर्डल नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो बात करने से भी डरे या वो टीचर को अप्रोच ही ना कर सके। स्टूडेंट्स कैन गो एट एनी टाइम।
1: और मेरा ख्याल है ये जो हमारा, क्योंकि हम लोग भी ये कहते हैं एज अ टीचर, मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे अपने बच्चों से ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ गुजरता है। दिन के 8 से 9 घंटे हम डेडिकेटेडली सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं। अब जब हमारे ऑफिस में आते हैं तो मेरा ख्याल हम आपको ओपन एंड के साथ आपको वेलकम कर रहे होते हैं। सो ये जो तरबियत का अमल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस्ताद कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जो आपके जहन के ऊपर तासुर छोड़ती है। आवाज की टोन कैसी थी, मुझे कितना वेलकम किया, कहाँ डांट पड़ी, और कई दफा तो फिर अब तो हमें भी अपने टीचर्स की डांट याद आती है कि वो अच्छा किया वहां से झड़क दिया, क्योंकि अगर हम वो कर रहे होते तो आज ये ना कर रहे होते। तो आपका कोई यादगार लम्हा जब आपको उस वक्त लगा हो कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन अब क्योंकि आप खुद उस्ताद हैं तो अब आपको लगता है कि नहीं वो ठीक मुझे टोका था?
2: मुझे अभी भी याद है कंप्यूटर साइंस के टीचर हमें आके टास्क देते थे, यू हैव जस्ट हाफ एन आवर टू कम्प्लीट दिस एंड सबमिट विद इन क्लास टाइम. अब उस टाइम पे हम बैठ के उस टीचर को जो है वो ब्ला ब्ला बोल रहे होते थे कि ये क्या है,
1: हम रोबोट्स हैं, इतनी जल्दी करेंगे ये. ऊपर तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था,
2: चैट जीपीटी भी नहीं होता था, और इतने कम टाइम में हम कैसे सीवी बना सकते हैं. बट मुझे अब ये चीज रियलाइज होती है कि वो जो टीचर थे उन्होंने हमें स्किल सिखा दी कि हमें विद इन टाइम फेज वो टास्क असाइन करके हमने जब उसको कंप्लीट किया प्रेशर के साथ तो उसने हमें एक.
1: इसका मतलब है जो उस्ताद आपको चैलेंज देता है उस वक्त तो आपको शायद बुरा लग रहा होता है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन आपको वही उस्ताद कम वक्त में बहुत सा काम करना सिखा देता है. तो ये भी हमारे सुनने वालों के लिए है कि यूसीपी का और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कल्चर है कि हम बच्चों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहते हैं ताकि वो इन चैलेंजेस के साथ एक नई चीजों के साथ आए. एंड आई नो कि हमारे बच्चे वॉक इन करते हुए भी आइडियाज के साथ आ जाते हैं कि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, क्या हम यहाँ कर सकते हैं? हम कहते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाए बैठ जाए, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं या इसको एज इट इज लेके चलते हैं. जैसे आई रिमेम्बर कि कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने प्लास्टिक बॉटल्स का कुछ करना है और उन प्लास्टिक बॉटल्स को हमने चेंज करना है किसी ऐसी चीज के अंदर जो कि वायबल हो. तो उसमें ये हुआ कि लास्ट ईयर 14 अगस्त पे हमने यूनिवर्सिटी ने और तखलीक बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर ने, आई रिमेम्बर यासिरवान वॉज वेरी मच यू नो डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट, और हमने एक ISP इंटरनेशनल के साथ मिलकर यहाँ एक रिवर्स वेंडिंग मशीन जो सी है उसको भी रखा, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग मर्ज करें, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए. हमारे अपने स्टूडेंट्स रिवर्स वेंडिंग मशीन्स के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स को डालते हैं और उसका जो क्रश है उसके थ्रू हम ईंटें बना रहे हैं जो कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के अंदर या हमारी जो यूनिवर्सिटी का एक कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके थ्रू हम लोग बच्चों के दिए हुए कचरे से एक नई चीज बना के यूनिवर्सिटी को हम दे रहे हैं. दिस इज समथिंग जो कि हम लोग करना चाह रहे थे, और ये मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से चला भी रही है. तो अब हमारे सुनने वालों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? आपकी यूनिवर्सिटी है, आप इसे ऑन करती हैं, आज आप मेहमान हैं, कल आप स्टूडेंट थी, आज आप खुद उस्ताद हैं. सो आपकी एक ऑनेस्ट रिव्यू के अंदर हाउ इज एक्सपीरियंस जो कि जो बच्चे नहीं ले रहे उन्हें लेना चाहिए?
2: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे मैंने भी स्टार्ट में भी कहा कि मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी किया, तो अगर आपका एक एक्सपीरियंस बुरा रहे तो आप नेक्स्ट रिस्क नहीं लेते. तो मैंने खुशी के साथ मास्टर्स में एडमिशन लिया क्योंकि मेरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट UCP के साथ है. तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और मैं आज जो भी हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ, और अपने जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी उसमें जितने भी टीचर्स हैं उन सब का कहीं ना कहीं रोल है.
1: बहुत शुक्रिया आमना इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए. और क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अब भी हमारे एडमिशन्स तो ओपन है, BS बायोटेक्नोलॉजी, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS फॉरेंसिक साइंसेज, MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी और PhD इन बायोटेक्नोलॉजी. सो इन तमाम तर डिफरेंट आस्पेक्ट के साथ हम लोग आपको वेलकम भी करना चाह रहे हैं. एडमिशन्स भी ओपन है, हमारे एडमिशन जो सेंटर है उससे आप कभी भी रابطہ कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप रीच आउट कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप नंबर्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन पेजेस पे भी मिल जाएंगे. और हम यही चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एक वाइब है, जो एक्सपीरियंस है या जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हम तमाम लोगों में डेवलप करें. ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं तो हम आपको कह रहे हैं, हम इसका हिस्सा मेरी जात पिछले 12 साल से इस इदारे से मुंसलिक है, और आप किसी इदारे में इतना लंबा अरसा तभी गुजारते हैं जब इदारा खुद आपको माँ की तरह लेकर चल रहा होता है. तो हमारे जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं और हम पूरी उनको ऑन भी करते हैं, उनकी ऑनरशिप भी लेते हैं. अभी नहीं, जब वो हमारे लमनाए हो जाते हैं या यहाँ से चले जाते हैं वो फिर हमारे और ज्यादा अपने हो जाते हैं. और जैसे आज आप हमारा फखर है आमना, इंशाल्लाह हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे नए आने वाले बच्चे भी हमारा ऐसा ही फखर बने और बहुत सी आमना आबिद हमारे सामने आए. बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, और सुनने वालों को आमना आबिद और सादिया ज़िया की तरफ से मोहब्बत भरा खुदा हाफिज, और इंजॉय भी कीजिए और UCP को विजिट जरूर कीजिए. बहुत शुक्रिया.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से गैरहाजिरी की वजह पूछें तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर न हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: Are you tired of feeling

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic 2.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली इसराम खिदमत में हाजिर हूँ और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज प्रोग्राम उम्मीद नो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट अनम इल्यास। अस्सलाम वालेकुम अनम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसी हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अनम, आज एक नहायत अहम मौजू के साथ मैं आपकी पेश खिदमत हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूथ के लिए एक नहायत अहम टॉपिक है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे नौजवान प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं या कुछ सोचते हैं करने के लिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ती है, टाल मटोल आ जाता है कि मीन्स टू से अगर वो किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए एक रास्ते को चूज़ करते हैं कि इस रास्ते पे मैंने चलना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए मुख्तलिफ ऐसे वजूहात पैदा हो जाती हैं। काफ़ी दफ़ा उनको वो स्ट्रगल छोड़ना पड़ जाती है, कभी वो स्ट्रगल को ले कर चल पड़ते हैं। तो क्यों, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं कि हमारी यूथ, हमारे नौजवान क्यों टाल मटोल का सामना करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करते हैं?
4: जी अली, जो प्रोस्टिकेशन आपने मेंशन की है अभी ना, इसकी मेन वजह तो ये आती है कि जो पाकिस्तान की यूथ है ना, वो ऐसे डीमोटिवेट तो एक दूर की बात होती है, उनके लाइफ के कोई गोल्स ही नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एडमायर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से। उनके आज पास कोई बैठा हुआ है, वो अपनी स्टोरी सुनाएगा, दे विल एडमायर हिम। कल कोई और दूसरा बैठा होगा, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, वो उसको एडमायर करने लग देंगे। तो उनका एक स्पेसिफिक ना, एक कह लें कि उन्होंने अपने माइंडसेट के लिहाज से नहीं देखा कि हमारे लिए क्या बेहतर है ना, हमने क्या आइडलाइज किया हुआ है, हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हमें फ्यूचर, ये तो किसी और का फ्यूचर है ना। सक्सेस स्टोरी सुने आप, बट वो उसको ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जैसे किसी को फ्रीलांसिंग में बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत सक्सेस मिल गई, ठीक है, लोगों ने उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। फ्रीलांसिंग में भी बहुत अनसक्सेसफुल लोग हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं करते। आप जिससे पूछे, फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, बहुत आप नाम कमा रहे हैं, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक्स में कोई नहीं गया कि भाई आपके लिए फ्रीलांसिंग मैटर भी करती है कि नहीं, आपको करनी भी चाहिए या नहीं, कि आपका आप उसमें सक्सेसफुल हो सकोगे कि नहीं। उन्होंने बस देखा वो सक्सेसफुल है तो मैं भी हो जाऊंगा।
3: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल है ना, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे होते हैं। और मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि लोग 3 to 4 डोमेन्स में अपनी लाइफ को लेकर चल रहे होते हैं। अगर बाई प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल वो लॉयर हैं या बाई प्रोफेशन वो मीडिया पर्सन हैं, तो वो 3 से 4 और डोमेन्स की जिन जो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, बरक्स होंगी एक दूसरे से, सो उसको लेके चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में या उनकी सिटिंग में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मीडिया पर्सन हूं तो अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा मौजूद है जो कि एक अच्छा फ्रीलांसर है, तो मैं साथ ही साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरा एक और दोस्त है वो लॉ से अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि साथ LLB की डिग्री स्टार्ट कर दूंगा। तो हम बहुत जल्द, मैं समझता हूं, इंस्पायर हो जाते हैं दूसरों से और मुख्तलिफ डोमेन्स में चलने लग जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या हमें अपनी एक डोमेन को पकड़ के उसमें मेहनत करके एक अच्छी अचीवमेंट और एक अच्छा स्टेज अचीव कर सकते हैं हम?
4: जी ऐसे ही, क्योंकि अगर आप पेशेंस से काम करोगे, ठीक है, उसमें आप अगर दो क्वालिटीज लेके आते हो, कॉन्टीन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आइदर कोई भी फील्ड है, इवन CSS की अगर आप अटेम्प्ट देना चाहें, तो कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम तो है नहीं है लाइफ में ना। इम्पॉसिबल जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, मेरा ये बिलीव। एंड आई एडमायर के भाई लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि आप जब एक चीज़ पे फोकस ही नहीं आप अपना 100% रखोगे तो आप अचीव कैसे करेंगे? आप उस पर 20% फोकस कर रहे हैं जो चीज़ मैटर कर रही है, और 80% आप और ग्रैब कर रहे हैं कि मैं किस चीज़ पर और फोकस करूँ। ملٹیپل انکمز کی لائک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لائف میں کہ وہ ایک آپ کا سیفر زون ہوتا ہے, بٹ دیٹ واز ناٹ یور انیشیل اسٹیپ کہ آپ اسٹارٹنگ میں اپنے آپ کو نا چار پانچ فیلڈز میں ایسے انگیج کر لیں کہ آپ ایک کو بھی پراپر ٹائم نہیں دیں.
3: جی بالکل انم, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انم سے ہم اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے پروکریسٹینیشن سے بچ کے ایک مضبوط خواب کو ہم بنا سکتے ہیں اور کیسے ایک ڈریم کو سیٹ کر کے ہم لائف میں چل سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया और हम शो कर रहे हैं उम्मीद नो, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं अनम अलियास, जिनका ताल्लुक है लॉ की फील्ड से। तो चलते हैं अनम से पूछते हैं कि अनम, क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना ज़रूरी है और कैसे एक ड्रीम को अगर हम सेट कर लें तो प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल के इस सफ़र से हम बच सकते हैं?
2: मेरे ख्याल से जो ड्रीम है ना, वो बेसिक एक चीज़ की हर एक की बेस होती है ना, एक आपकी सक्सेस की बेस होती है। ठीक है, आपका गोल, आप उसको ड्रीम का नाम दे दें जो भी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे ना, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ यही कंसीडर करना है कि भाई यार मैं ये भी कर लूँ, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है अपनी लाइफ से, आप करना ही क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी के साथ। तो जब आपका एक गोल सेट होता है, तब आपके लिए एक ना पाथवे बन जाता है। नो डाउट आप गोल तक तो नहीं पहुँचेंगे, बट आप कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ना, लाइक यू विल नॉट बी अ फेलियर ना। ठीक है, आप अगर मिड में भी रहते हैं, हाफ सक्सेस भी अचीव करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी अ सक्सेस। ठीक है, वो बेशक हाफ होगी, क्वार्टर होगी, एटलीस्ट फेलियर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए इनिशियल स्टार्टअप लेना ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग लाइन शुरू करना ज़रूरी होती है, और वो तभी होती है जब आपने कोई एक मंजिल की हो कि मैंने यहाँ से चलना है और मैंने यहाँ तक पहुँचना है। तो वो जब गोल हो गई नहीं, तो फिर आपने क्या ही अचीव करना है लाइफ में।
1: एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और आजकल हम देखते हैं कि हमारी यूथ जब गोल्स सेट कर रही होती है, तो वो जो एक जिस पर्सनैलिटी को सामने रख रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स होते हैं, बैचलर के BS के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर सेट कर रहे होते हैं किसी CSS के ऑफिसर को या सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को, तो उसके लिविंग स्टाइल, उसके लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी वो गाड़ियाँ, उसका वो प्रोटोकॉल, उसको वो माइंड में सेट कर रहे होते हैं। लेकिन क्यों हमारी यूथ निगलेक्ट कर देती है उस स्ट्रगल को, उस पाथ को जिससे वो सब गुजर के गए होते हैं? कितनी रातों को जाके कितनी मेहनत की जाती है, कितना पढ़ना पड़ता है, तो यूथ सिर्फ उस फेम को एंजॉय करने के लिए क्यों इंतज़ार में पड़ जाती है, क्यों उस स्ट्रगल को अडॉप्ट नहीं करती दिल से?
2: क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलना ही नहीं ना चाहते, वो अपना कंफर्ट देखते हैं, उनको कामयाबी भी चाहिए और अपना कंफर्ट जोन भी चाहिए कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। वो जब अगले मेहनत कर, एक यहाँ पे कॉल चलता है ना कि भाई जब मेहनत कर रहा हो, कोई स्ट्रगल कर रहा हो ना, उसको बातें सब करते हैं, ठीक है, और जब वो सक्सेसफुल हो जाए अगले को, अब ये होता है ना, इसका सिक्का चलने लगा, तब कितना लायक बच्चा है, ठीक है, ये शुरू से खानदान का ना, ठीक है, सबसे लायक बच्चा था, तब वो नहीं देखते कि उसने स्ट्रगल कितनी की है, उसने गालियाँ कितनी खाई है कि ये कुछ करता नहीं है, ये नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक अपने माइंडसेट से वो ठीक चल रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, तो वो तब कुछ भी नहीं था, लोगों को ये लगता था टाइम वेस्ट कर रहे। तो टाइम वेस्टिंग और स्ट्रगल में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, जिन्होंने अगर कभी लाइफ में फेस किया होगा, उनको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि आप ऐसे स्ट्रगल लाइफ में, आपको यही लगता है कि यार आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप क्या ही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो कर रहा होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ये होप होती है कि यार मैं कर लूँगा,
1: उसको अपना ड्रीम नज़र आ रहा होता है और उसको पता हाँ, होता है कि इस गोल को मैंने अचीव कर लेना,
2: अपने आप पे बिलीव होता है। और जो लाइक फेलियर में होते हैं, उनको ना कहीं ये डाउट होता है, पता नहीं यार हमसे होगा कि नहीं, क्योंकि उनको दे देम सेल्व नो कि यार वो इतनी एफर्ट कर नहीं रहे जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कहीं ना लैक कर रहे हैं, और वो उसको ओवरकम भी नहीं करते, वो बस ये छोड़, यार चलो छोड़ो, आप देखी जाएगी, वो फिर जो देखी जाती है ना, वो फिर उनको लाइक ये आप सुसाइडल जो इंसिडेंट्स देखते हो सारे यही हैं, वो अपनी लाइफ ऐसे गुजार देते हैं कि भाई देखी जाएगी, और एट द एंड नहीं देखा जाता जो होता है।
1: बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि माजी में जब आज से सिर्फ 3 साल पहले अगर मैं सोचूं, राउंड अबाउट 4 साल पहले जब मैं ISSP के टेस्ट के लिए अपीयर होने वाला था फॉर द सेकेंड लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, सो मेरे एक सर थे, मेरे इंस्ट्रक्टर थे, मेजर तनवीर उनका नाम था, उनका भी ताल्लुक सरगोधा से था, तो एक दफ़ा उन्होंने बिठा के एक बात मुझे की थी और वो बात आज तक मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आई है और अभी भी बहुत चीज़ों में मुझे काम आती है। सर ने बोला था कि एक जो माइंड में तुमने फेक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, फेक एक चीज़ क्रिएट की हुई है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, या तुम्हें लगता है कि तुम ISSB आराम से पास कर जाओगे, जिसकी रेशो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन क्राइटेरिया से भी कम है, 0.001% लोग सिलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, कोई 1.5 लाख में से जाके 2 से 3 ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना फेक वर्ल्ड को ख़त्म करो, अपने माइंड में ये चीज़ छोड़ दो कि तुम बहुत कुछ हो, समझो कि तुम कुछ भी नहीं हो। देखें जब खाली हाथ आप लेके जाते हैं तभी आप कुछ लेके आते हैं, जब आप ये समझते हैं कि मैं सब कुछ हूँ तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। तो हमारी यूथ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उस फेम को तो इन्जॉय करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट उस फेम तक ही पहुंच जाएं, डायरेक्ट उस जो अचीवमेंट्स हैं डायरेक्ट उन तक पहुंच जाएं। हम निग्लेक्ट कर देते हैं उस सफ़र से गुजरी हुई मेहनत को, उन डिफरेंट पैचेस को। तो अनम, मैं आपसे ज़रूर इस बारे में पूछना चाहूँगा कि जब भी हम किसी ख्वाब को सोचते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक सफ़र और जस्तजू का आगाज़ करते हैं, रास्ते में बहुत सा ऐसा वक्त आ जाता है कि हालात वैसे नहीं रहते, मुश्किल हालात आ जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, यूथ का इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है। तो कैसे हम किसी ड्रीम को इजीली अचीव कर सकते हैं, कैसे हम उस काम को डिवाइड कर सकते हैं, या क्या वो वजूहात हैं, या क्या वो एक वर्कआउट हो जाएगा, ये क्या वजह होगी जिसके थ्रू, जो रीज़न होगा जिसके थ्रू हम उस ड्रीम तक पहुँच जाएँ?
2: क्योंकि एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर लॉन्ग टर्म आपका कोई गोल है भी है तो आप उसको शॉर्ट टर्म्स में कन्वर्ट करो, ताकि आपको इन अ लाइफ में वो एक होता है ना, आपको एक साइकिल मिले कि भाई आप इन अ 1 ईयर आपने ये अचीव किया है, तो वो आपको थोड़ी मोटिवेशन देता है। इन अ 2 ईयर आप कहीं और पे होंगे, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहीं पे तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मूव ऑन करेंगे। बट एट द एंड अगर आप सिर्फ उसके बरक्स सिंगल गोल रख लें लॉन्ग टर्म के, मैं 10 साल बाद ये हूँ, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको ये लगेगा यार मुझे 3 साल हो गए, मैंने क्या ही कर लिया। वो आप 10 साल वाली इमेज देखेंगे ना, बट जब आपने उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में रखा होगा तो आपको एक होता है ना तसल्ली के साथ इंसान चल जाता है, ठीक है। अगर कोई इंसान उसको अच्छी तसल्ली देने वाला भी हो ना, तो वो भी उसको ले चलता है साथ। वो एक चीज़ चलती है आपके लिए जब आप अपनी शॉर्ट सक्सेसेस जो है ना, जो मैटर भी करती हैं बहुत, ठीक है, क्योंकि वो अचीव होंगे तो एट दी एंड आपको वो बिग स्टेज मिलेगा ना जो आपने ड्रीम किया हुआ, तो आप उसको भी इंजॉय करके चलो। ये नहीं है कि उसको बस आप निगलेक्ट करते जाओ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए। तो आप जैसे इंजॉय करते हुए चलोगे तो वो आपके लिए फिर एक इजी भी होगा और आप डीमोटिवेट भी नहीं होते।
1: बिल्कुल ऐसे ही, ये पाथ काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम उनको स्टेप्स में डिवाइड करके चलें। एक छोटे से ब्रेक पे चलेंगे, उसके बाद अनम से पूछेंगे कि कैसे प्रस्टिकेशंस और टाल मटोल हम

0: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद नो। और मेरे साथ मौजूद हैं अनम इलियास, जिनका ताल्लुक है लॉ से, और हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोकेस्टिनेशन पे, टाल मटोल पे, कि कैसे हम अपने ख्वाब को अचीव करते हुए एक सफ़र से गुजर रहे होते हैं और टाल मटोल हमें कमज़ोर कर देती है, हमारे ड्रीम को हमसे दूर कर देती है, और ये सफ़र ख़त्म हो जाता है या नाकामियों की तरफ चला जाता है। तो अनम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं, कौन से ऐसी वजूहत हैं, और कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी यूथ के लिए एक ऐसा पैगाम छोड़ सकते हैं कि अगर वो उनको फॉलो करें तो प्रोकेस्टिनेशन और टाल मटोल से वो बच सकें।
2: इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप फोकस्ड रहो, ठीक है, क्योंकि जब आप टाल मटोल करते हो, आप एक कोई आपका कोई भी एक्टिविटी आप उसको कल पे शिफ्ट करते हो, जब कल भी आपने करना ही है, तो अगर आज कर लोगे तो दैट विल बी बेटर, के भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि आप उसके ऊपर एक ग्रिप रख लेते हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो अगर इसमें कोई ऊपर नीचे चीज़ होती है तो मैं मैनेज कर लूँगा सब। लेकिन आप जब लास्ट मोमेंट पे करते हो ना, तब फिर आप या तो चलते ही हो या डूबते हो, ठीक है, एक ही स्नैरियो।

0: ये होता है वो मिड वाला कोई रास्ता नहीं निकलता कि कोई हल निकल जाएगा इसका। और सेकेंडली ये आता है कि अगर आप अपनी जो रूटीन है ना वो थोड़ी बहुत समहाउ कैजुअल करो, ठीक है, उसमें टाइम टेबल रखो, लाइक नॉट प्रॉपरली फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 बज गए तो उठ जाओ, 6 बज गए ये चीज, लेकिन एक डेली चार्ट बनाओ इन केस के। मुझे किसी ने बहुत अच्छी एक एडवाइस की थी कि भाई आप रोजाना सुबह मोबाइल देखने के बजाय, होता है ना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के अपडेट्स देखने के बजाय, आप अपने नोट्स रखो, आपको सुबह एक ना अलार्म मिलता है कि भाई आपने आज ये एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, और समहाउ आप उनमें से, चलो अगर 5 एक्टिविटीज है आप 5 या 3 भी अगर मैनेज करते हो तो समहाउ आप गोल के बहुत नजदीक पहुंच जाते हो। बट उससे बेहतर हो कि आप उसको ऐसे निगलेक्ट कर दो, यार आज का दिन तो गुजर गया कल देखेंगे अब इसको, तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होता है, क्योंकि जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना वो सक्सेस में बहुत मैटर करते हैं रेदर देन रिजल्ट।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बेबी स्टेप्स और एक छोटे स्टेप्स ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। आप कभी भी किसी चीज़ को अचानक से अचीव नहीं कर पाते, और हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी अचानक नहीं आ जाता, उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत और छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको उस कामयाबी तक ले जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या इन छोटे स्टेप्स को ले कर हम अपने गोल्स या जो हमारे एक ड्रीम हमने सेट किए हुए, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं?
0: जी, मेरा मानना ऐसे ही है कि आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, अगर आप फुली मोटिवेटेड और फोकस्ड रह के आप अगर बेबी स्टेप्स भी ले रहे हो ना तो आप अपना इजीली गोल ना अचीव कर लेंगे। एंड सक्सेस रेट 50-60% ही होता है, ठीक है, 100% तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ होती है कि जब आप एक तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो ना तो रेदर देन आप अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल की जनरेशन में आप ऐसे देखेंगे वो सक्सेसफुल तो बहुत हैं बट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स को छोड़ थे, बट उनकी फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ थे ये। तो जब आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है ना तो आप दोनों चीज़ें मैनेज करके चलते हो।
1: बिल्कुल ऐसे ही अनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमारे सामीन के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें ज़रूरी इस प्रोग्राम से कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बच के वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं?
0: यही 2-3 मेरी गाइडलाइन थी उनके लिए कि एक तो वो फोकस्ड रहें, अपना कोई गोल सेट करें, ठीक है, विदाउट गोल या विदाउट ड्रीम तो कुछ आप अचीव नहीं कर सकोगे, जब होगा ही नहीं तो आप ब्लैंक हो गए, तो ब्लैंक इंसान क्या ही अचीव करेगा, ना उसको चाहत होगी किसी चीज़ की कि मुझे कोई चीज़ मिले लाइफ में, या मैं ये चाहता हूँ मैं कल को ये हूँ, मुझे लोग इस नाम से जाने। तो दूसरा ये है कि अगर आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वो एक बेहतर होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो, ठीक है, आप थोड़े बहुत डीमोटिवेट होते हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत होता है ना कि फेलियर देखना भी पड़ता है, इन अ रो आप सक्सेस ही तो नहीं देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सब देखें सक्सेस, बट समहाउ अगर लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आते हैं जो कि नॉर्मल है तो आप उनको फेस करने की ना आपके पास स्ट्रेंथ रहती है, आप मोटिवेट रहते हो थोड़ा बहुत कि कोई बात नहीं, ये काम गलत हो गया वो ठीक भी तो हुआ था ना, तो ये होप जो है ना आपको ले चलती है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अनम आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी कामयाबी के सफ़र में आप चल रहे हों तो मुश्किलात तो आपका बाय प्रोडक्ट है, आपने वो फेस करनी ही करनी है, साथ ही साथ आप में इतना सब्र होना चाहिए कि अगर किसी स्टेप पे आप कोई फेलियर फेस करते हैं तो उस फेलियर को आपने सक्सेस के लिए एक पुश समझ के चलना है कि ये मेरे लिए शायद कामयाबी के सफ़र के लिए एक गुड पॉइंट है कि शायद मैं इसको अडॉप्ट करके चलूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी सामेईन से इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर है मोहम्मद हमादुर रहमान, हेड ऑफ वॉलंटियर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जुगनू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वॉलंटियर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज भी हमारे साथ एक बड़ा अच्छा और बहुत वसी तजर्बा और वसी रीच रखने वाला इदारा मौजूद है, जिसका नाम है इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, जो कि 2007 में कराची में एस्टेब्लिश हुआ और 2014 में पंजाब में भी इंटरवेंशन स्टार्ट की इन्होंने। और माशाल्लाह कोई पिछले 16 साल से पंजाब में, पिछले 16 साल से ओवरऑल पाकिस्तान में, और 10 साल से पंजाब में हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं जनाब वकास अहमद साहब, जो कि मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस हैं। सर, वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
2: वकास भाई, आप चाहेंगे कि आप अपने दायरे का इंट्रोडक्शन अपने अल्फाज में करवाइए।
3: अच्छा, इंडस जो है बेसिकली एक ऐसा विजन है, एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर फॉर ऑल, जस्ट टू प्लीज अल्लाह सुबहाना मताला। ये इस पर्पस को लेके स्टार्ट हुआ था 2007 में। इसके बानी जो है वो डॉक्टर अब्दुल बारी खान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल में आज इंडस जो है पाकिस्तान में 10 अस्पताल हैं, 54 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पेनिट्रेशन है, और इसके अलावा ब्लड सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, मलेरिया सेंटर्स हैं, बोर्ड क्लिनिक्स हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं। प्राइमरी केयर से लेकर टर्शरी केयर तक इंडस अल्हम्दुलिल्लाह जो है विद इन 16 ईयर्स हर शोबे में वो सर्व कर रहा है, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ये सबसे बड़ी बात है इंडस की, कि इंडस जो है वो कैशलेस है और पेपरलेस है। एनीबॉडी कैन कम एंड गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नोबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन कि आप लोग के पास एक रुपया है, दो हैं या लाख रुपये हैं। नोबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड।
2: माशाल्लाह जी, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट सर्विस जो आप लोग सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह कौम को। पंजाब में आपको 10 साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो आप किन किन इलाकों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब में? मतलब मेन लाहौर में तो मैंने आपका देखा है हॉस्पिटल, बाकी और कहाँ कहाँ प्रेजेंस आपकी है लाहौर?
3: हमारी मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान में है इसके अलावा हमारा, और राजनपुर कच्चे के इलाके में हमारा बोट क्लिनिक चलता है। और बोट क्लिनिक बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमारा वेंचर है, जो कि राजनपुर कच्चे के इलाके में इंडस रिवर में जो है डिफरेंट डेज में जाके डिफरेंट जगहों पे डॉक होता है, और वहाँ पे डिफरेंट डेज में लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। यूँ कह लेंगे वो चलता फिरता हमारा मैटरनिटी होम है, इवन वहाँ पे हम लोग जो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो भी कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये है कि नॉर्मली उस एरिए में आपको पता है कि सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज होते हैं, लेकिन हमें वही लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक को। तो ये एक हमारा जो पंजाब में फुटप्रिंट है वो इस तरह से है। और इसके अलावा हमारे फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग लिम्ब्स बनाते भी होते हैं और लगाते भी होते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बच्चा है उसकी टांग कट गई है बचपन में, तो उसको हम लिम्ब बना के लगाएंगे। थ्रू आउट द लाइफ वो पेशेंट जो है हमारे साथ पर चलेगा, उसकी लिम्ब लगेगा, उसकी एक्सरसाइज भी होगी, प्लस उसकी फिर काउंसलिंग भी
2: साथ साथ कस्टमाइजिंग इट एज पर द एज रिक्वायरमेंट और ग्रोथ के मुताबिक उसको कस्टमाइज करते रहते हैं।
3: बिल्कुल,
2: ग्रेट, दैट्स ग्रेट जी। बोट क्लिनिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा आपका प्रोजेक्ट माशाल्लाह। मैंने जब आई थिंक बैक इन 2017 कराची में विजिट किया था आपका हॉस्पिटल इंडस का जो है वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट मजीद हुई नजर आई। तो माशाल्लाह इतना बड़ा हॉस्पिटल ऑलरेडी था, मजीद उसमें एक्सपेंशंस हो रही थी, और इन द मेन टाइम एक्सपेंशन होते तक भी काम शुरू हो चुका था जो उन एरियाज में होना था, और उसमें कंटेनर में आपने क्लिनिक्स बनाए हुए थे, वो मैं आपके इंट्रोडक्शन में भी देख रहा था कि कंटेनर क्लिनिक्स भी हैं माशाल्लाह। तो ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कंटेनर क्लिनिक्स कहीं ना कहीं?
3: जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, कंटेनर क्लिनिक वो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपने कराची में देखे होंगे, वैसे कंटेनर क्लिनिक का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे स्मॉल टाउन्स में जहाँ पे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल नहीं बना सकते, वहाँ पे हम लोग ये क्लिनिक्स लगाते हैं, कंटेनर क्लिनिक्स। वहाँ पे हम लोग इवन सिजेरियन तक वहाँ पे हम कर लेते हैं, तो वो हमारा एक अच्छा सेटअप है जो कि हमें एक तो क्विकली हम वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, प्लस लोगों को फैसिलिटेट करते हैं आप स्मॉल टाउन्स में। सेकेंडली ये कि वहाँ से आप लोगों को अगर टर्शरी केयर में रेफर करना हो तो हमें आसानी हो जाती है कि सेकेंडरी केयर तक हम लोग मैक्सिमम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि चले जाएं या प्राइमरी केयर तक, और वहाँ से फिर आगे जो फर्दर नीड है पेशेंट की उसको फिर वहाँ से हम अपने टर्शरी केयर सेटअप्स में रेफर करते हैं।
2: दैट्स ग्रेट। मैं देख रहा था कि जो लाहौर में आपका हॉस्टल है ये इसको एस्टेब्लिश हुए कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 2021 में आई थिंक एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था।
3: जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो लाहौर कैंपस की है हमारी 2017 में हुई, उसके बाद 2021 में हमने जो है ओपीडी स्टार्ट की और 2022 में हमने जो है 100 बेड स्टार्ट किए। विद इन एक डेढ़ साल हम लोगों ने इस कैंपस से जो है अराउंड कोई 5 लाख प्लस पेशेंट जो है वो ट्रीट किए हैं, अगेन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। और हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके जो हमारे फर्दर 300 बेड्स हैं वो विद इन दिस ईयर हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो अभी तक सर्विसेज हैं हमारे इस हॉस्पिटल में वो गायनी ऑब्स है, पेडियाट्रिक्स है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेड्स है, ईआर है, ओटीज हैं, और 6 हमारे 100 बेड्स ऑपरेशनल हैं। ये सर्विसेज हम अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे फेज़ में जो है हमारा प्लान है कि हम लोग इंशाल्लाह फर्दर टर्शियरी केयर सर्विसेज में ऐड कर देंगे।
2: दैट्स ग्रेट जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया इसको। मज़ीद इस पर बात करेंगे, और एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में अटका हुआ था कि आपने कहा कि जी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उस पर भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। टाइम हुआ एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं जुगनू, जो कि आपका अपना प्रोग्राम है, और इसमें हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं वकास अहमद साहब से, जो कि मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हैं इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के। वकास भाई, बात हो रही थी कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, और मेरा उस पर सवाल था कि वंस आई विजिटेड, मैंने देखा कि कुछ सवाल पूछे भी जाते हैं मैं से, लेकिन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि पूरा प्रोसेस अगर आप शेयर कर दें कि व्हाट्स द प्रोसेस टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल, कोई भी अगर जाता है वहां।
2: व्हेन पेशेंट कम्स इन, उसका टोकन मिलता है सबसे पहले। टोकन बनने के बाद उसका कार्ड बनेगा, जो कि MR कार्ड होता है। वो रजिस्टर्ड, वंस पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको वेलफेयर ऑफिस भिजवाया जाता है। वी आर द ओनली शेरे कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जो कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि ज़कात ज़कात डिजर्विंग पे लगे, और नॉन ज़कात जो है, डोनेशंस जो आती हैं, वो हम उसमें हर पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। जब वेलफेयर ऑफिस जाते हैं तो उसकी इज्जत को का बहुत ख्याल रखते हुए हमारे जो मुफ्ती साहिबान हैं, वो एक आधा मिनट मैक्सिमम लगाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ बेसिक से, जिससे वो फिर जज करते हैं कि इज ही ज़कात डिजर्विंग और नॉट। फिर भी अगर उन्हें लगता है, लेट सपोज कि इज ही ज़कात डिजर्विंग, फिर भी उससे पूछा जाता है कि ये आपका जो इलाज है ये ज़कात के पैसों से हो रहा है। अगर पेशेंट एग्री करता है तो फिर होता है, अदरवाइज आपको पता है कि जो सैयद और नॉन मुस्लिम होते हैं उन पर ज़कात नहीं लगती, तो उनको डोनेशन पर ट्रीट किया जाता है, और जो नॉन अफोर्डिंग होती है तो ज़कात पर चले जाते हैं। ये बस क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। उसके बाद उसके वाइटल्स होते हैं, और वो अगेन वाइटल्स करवाते ही उसी का सारा डाटा जो है ऑनलाइन वो डॉक्टर के पास चला जाता है, और वो OPD में ट्रीट किया जाता है।
1: दैट्स ग्रेट। एक और चीज़ जो हमने सुनी, बड़ी अच्छी लगी सुनने में, कि पेपरलेस, लेकिन आपने भी बताया कि टोकन निकलता है
2: जी
1: और कार्ड भी
2: बनता है। देखें, वो तो फॉर ऑब्वियस है, देखें जहाँ भी कुछ पेपरलेस चीज़ होगी, कुछ ना कुछ तो आपका पेपर है। वो कार्ड है तो पेशेंट ने अपने साथ बाद में लेके जाना है, और वो कार्ड की वैलिडिटी 1 साल तक होती है, ताकि उसे दोबारा आके वेलफेयर ना कराना पड़े। तो वो एक कार्ड तो उसके पास रहेगा। उसके बाद जब वो सारा उसका जो प्रोसेस है, वो वाइटल्स करवा रहा है, वो अपना वेलफेयर ऑफिस से जा रहा है, वो अपनी दवाइयाँ ले रहा है, वो डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसके कुछ लैब्स हैं, वो उसके इवन एक्सरे भी उसके जो हैं वो डिजिटलाइज ही आउट हो रहे होते हैं। एज इंडस जो है, आपको बताता चलूँ एक साथ इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडस इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको सारे को मेंटेन करना, और पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, फिर हमारे जैसे आपको बताया कि हमारी जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आउटरीच के, जैसे हमारे कंटेनर क्लिनिक्स हैं, बोट क्लिनिक्स हैं, हमारे प्राइमरी सेंटर्स हैं, हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, उन सबको सिंक्रनाइज करना भी जो है वो डिजिटली। तो वो फिर इसलिए हम कहते हैं कि वी आर पेपरलेस, कि आपका एक पेशेंट लेट सपोज कराची से उसने इलाज करवाया, वो लाहौर अपना MR कार्ड लेके आएगा, अपना MR नंबर नोट कराएगा, और वही जो उसका बैकएंड पेशेंट हिस्ट्री है सारी, वो लाहौर में भी शो हो जाएगी, और वो सारा अपना ट्रीटमेंट वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, सेट ऑफ ये कि अपने सारा मेडिकल रिकॉर्ड ला के डॉक्टर को अगेन दिखा।
1: दैट्स ग्रेट। दूसरे में इसमें ये भी एडअप करते चलूँ कि इसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल जो है ना वो बहुत लो है, और मोबाइल यूजर्स ऑल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई अगर ऐप अगर आप दें तो उसको वो शायद इंस्टॉल करना भी ना उनको आता हो। तो इसलिए किसी न किसी हद तक आपको पेपर या कार्ड देना पड़ेगा डेफिनेटली, ताकि उनके पास कोई रिकॉर्ड तो हो ना अपना। सो इट्स नेसेसरी। अब इसमें फर्दर मैं देख रहा था कि जो भी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका ट्रीटमेंट तो चलें फ्री है, लेकिन जो लोग उनके साथ आते हैं उनका रिहाइश और खाना भी आप लोग फ्री उनको प्रोवाइड करते हैं?
2: अच्छा सर, ये आपको थोड़ा बताता चलूँ कि पेशेंट का खाना भी हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और वो ये नहीं होता कि आपका मेस में जो है वो दाल रोटी बनी और सब पेशेंट्स को दे दी, जो उसे डॉक्टर ने कहा है फूड पेशेंट को वही फूड मिलेगा। सेकेंडली, जो आउट स्टेशन से पेशेंट आते हैं, उनकी जब वो घर से निकले ना देखें, उनका खर्चा शुरू हो गया।
1: एग्जैक्टली,
2: वो बेचारे चिंगची पे बैठे हैं, या किसी बस पे बैठे हैं, या ट्रेन पे बैठे हैं, पता नहीं वो किस तरह मुश्किल से पैसे लेके आ रहे हैं और अपना खर्चे के लिए किराया लगा के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर सेकेंडली, उनके लिए जो हैसल होती है वो रहना, पेशेंट का तो साथ है ही लेकिन अटेंडेंट का रहना, वो किसी रिश्तेदार के घर ठहरेगा, किसी बरामदे में सोएगा, किसी सड़क पे सोएगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सराय बनाया है। सराय बेसिकली पेशेंट के अटेंडेंट्स की रिहाइश का है, जो कि एक पेशेंट के साथ एक मेल और एक फीमेल वहाँ पे रह सकता है, जिसको डॉक्टर लिख के दे, और जो इम पेशेंट में हो, ना कि आउट पेशेंट का, जो पेशेंट मरीज दाखिल हो जाएगा हमारे पास उसके लिए, और उसका 3 टाइम का खाना डेली वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब वकास अहमद साहब से, जो कि मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस हैं इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के। वकास भाई, बात हो रही थी कि ना कोई पर्ची है ना कोई फीस।

0: है और कैश काउंटर नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। तो इतना बड़ा नेटवर्क आपने बताया कि आफ्टर गवर्नमेंट सबसे बड़ा नेटवर्क आप लोगों का है हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, हाउ डू यू मैनेज इट? इसके लिए तो ठीक ठाक ह्यूज एक्सपेंसेस चाहिए, ह्यूज आपको बजट चाहिए, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं?
1: अच्छा जी, इंडस मैं कहूँगा कि इट्स अ मिरेकल, क्योंकि जब बारी साहब हमें खुद बताते हैं कि जब स्टार्ट हुआ तो 1.5 करोड़ का बजट था और नाउ हमारा जो एनुअली बजट है ऑपरेशनल कॉस्ट 57 बिलियन है, और ये कैसे पूरी हो रही है ये आप मैं और सब लोग मिलके ही पूरी कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे समझ नहीं आई। जिस दिन मुझे समझ आएगी तो मैं भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से चल रहा है। इसका बेहतरीन मेरा ख्याल आंसर यही है, इवन शायद पेशेंट्स की दुआएं भी हैं। एक इंटरेस्टिंग पेशेंट स्टोरी मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। हम गए हुए थे मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ पे एक खातून आई हुई थी काफ़ी दूर से, तो मैंने कहा माँ जी तुम एड्डी दूरों की करना आए हो? शी सेड के पुत्र मैनु पता सी मेरा सिर्फ किराया लगना, बाकी मेरे रहन दा, मेरी रोटी दा, मेरे इलाज दा बिल्कुल ज़बरदस्त इलाज हो जाना। क्योंकि पंजाब में जैसे आपको बताया कि पंजाब में हमारा अच्छा फुटप्रिंट रहा है और हम 2014 से काम कर रहे हैं। पंजाब में हमारा जो मुजफ्फरगढ़ वाला हॉस्पिटल है, इट्स अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उसको आप जाके देखें यू विल बी अमेज्ड कि वो डेजर्ट में वहाँ पे सहरा में एक ऐसा जंगल में मंगल बना हुआ है कि लोग आके वहाँ के लोग वहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये मुजफ्फरगढ़ का आगा खान हॉस्पिटल है या मुजफ्फरगढ़ का कोई टर्शियरी केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो ये एक बेंचमार्क है पाकिस्तान में आगा खान, तो इस वजह से मैं आपको आगा खान का कहा। अदरवाइज ये कि आप वहाँ पे जाएं और देखें लोग किस तरह से इलाज कर रहे हैं और उनकी दुआएं शायद ये हम इतना बड़ा नेटवर्क बना के और चला रहे हैं।
0: दैट्स ग्रेट जी। सर थोड़ा सा रोशनी डाली गया इस चीज़ पर कि जब आपका ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है लाहौर वाला जुबली टाउन में जो आपका काम कर रहा है, ये जब फुली ऑपरेशनल होगा तो उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होंगी? इस पर
1: उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सर्विसेज के साथ साथ बताता जाऊँ कि 1 मिलियन पेशेंट हमारे अप्रॉक्सीमेटली हैं जो ट्रीट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्विसेज हमारे इसमें कार्डियो भी आ जाएगा, कैंसर भी आ जाएगा, डायलिसिस हो जाएंगे, प्लस मोर टर्शियरी केयर सर्विसेज जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हमारा प्लान है कि सारी हम इसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट करें।
0: राइट, हम शुरू में बात कर रहे थे कि इंडस काम कर रहा है पंजाब में, लेकिन अगर हम देखें लाहौर का जो प्रोजेक्ट है आपका वो 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, तो उससे पहले आप किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इन एरियाज में?
1: अच्छा, इंडस दो किस्म के मॉडल बेसिकली चलाता है। एक इंडस के ऑन डाउन मैनेज कैंपसेस होते हैं जो कि जैसे हमारा लाहौर और कराची है, इस तरह तो और कैंपसेस भी हैं, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे जो कुछ गवर्नमेंट के साथ होते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको हम इंडस गवर्नमेंट से लेता है, फंडिंग उसकी गवर्नमेंट करती है, इंडस उसको मैनेज करता है, स्टाफ को ट्रेन करता है, ट्रेन करने के बाद वो हम हॉस्पिटल गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। जैसे लाहौर में हमारे पास इससे पहले लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट को वापस किए हैं। लाहौर में 5 THQs थे हमारे पास। इस तरह पंजाब में हमारे पास मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के हॉस्पिटल हैं। एक हमारा मुल्तान वाला जो है वो किडनी डिजीज़ का स्पेशलाइज हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारे किडनी ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से हम जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैंपसेस चला रहे होते हैं।
0: तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आप जो है डिफरेंट जगहों पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक मॉडल है जी, और मेरे ख्याल में इसको बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए और इसी पे चलते हुए मजीद लोगों तक रसाई हो सकती है हेल्थ सर्विसेज की। जो कराची का आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसमें करीबन 1500 बेड्स पर मुश्तमिल वो है, वो काफ़ी बड़ी फैसिलिटी बन गई है माशाल्लाह से, और इसके अलावा थर और गिलगित जैसे इलाकों में भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नेटवर्क वो कैसे मैनेज होता है मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक।
1: जी, ये मैंने आपको वही बताया कि जिस दिन हमें भी समझ आ जाएगी तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। ये एक मिरेकल है जो कि पेशेंट की दुआएं चल रही हैं, नेक नीयत, सबसे बड़ी बात है नेक नीयत थी। देखें, जिस शख्स ने ये स्टार्ट किया और वो नेक नीयत ही थी, उसके बाद ही पेशेंट ट्रीटमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर ही दुआएँ आना शुरू हुई। अगर नीयत ही साफ ना होती तो शायद ये पेशेंट ट्रीट ही ना हो पाता पहला भी, और फिर दुआएँ ना चल आती और इस तरह से एक नेटवर्क ना बनता जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट नेटवर्क हेल्थ केयर नेटवर्क बन चुका आज।
0: बिल्कुल ठीक है विकास भाई। अब सालाना तौर पर अगर हम देखें तो कितने पेशेंट्स प्रोसेस से गुजरते हैं ओवरऑल, अगर देखें या लाहौर में अगर हम देखें फ्लैग प्रोजेक्ट में, आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के अंदर?
1: एनुअली जी, वी आर ट्रीटिंग अराउंड 6 मिलियन पेशेंट थ्रू द नेटवर्क हम लोग, और पंजाब में हाफ ऑफ द 6 मिलियन हम लोग पंजाब से ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे इस कैंपस में इस साल में 100 बेड से हम लोग मोर देन 5 लाख पेशेंट जो हैं वो हम ट्रीट कर चुके हैं। वैसे हम नेटवर्क में 5 लाख जो हैं हम लोग मंथली पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं।
0: दैट्स ग्रेट। तो यानी कि एक बड़ा चंक जो है पेशेंट्स का वो पंजाब से ही इस प्रोसेस से गुजरता है, और बाकी जो हाफ ऑफ द 6 मिलियन है यानी कि 3 मिलियन के नाम वो पूरे पाकिस्तान से वो ट्रीटमेंट
1: जी
0: रहता है। ऑब्वियसली पंजाब की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है
1: और फुटप्रिंट भी हमारा
0: फुटप्रिंट भी ज़्यादा है, इस वजह से डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो नजर आएगा। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुर और तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनाब वकास अहमद साहब से जो कि मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के। वकास भाई, बड़ी डिटेल से आपसे बात हुई लेकिन एक सवाल अभी भी मुझे लगता है कि तृष्णा रह गया कि अगर हम सपोर्ट करना चाहें आपके इदारे को, कोई भी जनरल पब्लिक से सपोर्ट करना चाहे और वो भी चाहें कि डोनेट करें और पार्टिसिपेट करें इस ग्रेट कॉज में, तो वो किस तरह से डोनेट कर सकते हैं, आपको कैसे अप्रोच करें?
2: उसमें हमारे डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जी। आप हमें ऑनलाइन भी जो है वो डिपॉज़िट करा सकते हैं, उसके बाद आप हमारा डायरेक्ट डिपॉज़िट भी है, बैंक में जाके भी आप डिपॉज़िट करा सकते हैं, हर बैंक में हमारा अकाउंट है। आप लोगों को अगर डोर स्टेप कलेक्शन करानी है तो हमारा UN नंबर है 04211111880, अगेन 04211111880। इसके अलावा हमारे डोनेशन कलेक्शन सेंटर्स भी हैं जो कि लाहौर के जो गुलबर्ग में हैं, DHA में हैं, निकलसन रोड पर और कैनाल रोड पर हैं, वहाँ पर जाके भी आप डायरेक्ट वॉक इन करके डिपॉज़िट करा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल में आके आप जो है डिपॉज़िट करा सकते हैं डोनेशन और ज़कात।
1: दैट्स ग्रेट जी। आप मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से काइंडली अपना जो नंबर है वो रिपीट कर दीजिए UN का।
2: जी, हमारा UN नंबर है 04211111880।
1: ग्रेट। आपका ज़्यादा चंक कहाँ से आता है डोनेशंस का, मतलब पाकिस्तान से आता है या दूसरे ममालिक से भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं?
2: ये पाकिस्तान नेशनली इंटरनेशनली दोनों ही हैं जी। जब से इन्फ्लेशन हुई है तो हमारा इंटरनेशनली भी बैलेंस आउट होना शुरू हो गया है।
1: ओके।
2: क्योंकि पहले पैसे उतने ही आते हैं, शायद वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली इंटरनेशनली हमारे दोनों जगहों से अच्छी डोनेशन आती है।
1: सो इसका मतलब है कि इंडस की क्या दूसरे ममालिक में भी प्रेजेंस है किसी हद तक, ऑफिसेज की हद तक एटलीस्ट?
2: जी बिल्कुल, हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, 70+ चैप्टर्स हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें हम UAE में भी हैं, हम सऊदीया में भी हैं, स्विट्ज़रलैंड हैं, USA हैं, UK हैं, तो और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे इस तरह इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं।
1: सो इसका मतलब है कि अगर बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी आपको डोनेट करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑनलाइन ही डोनेशन भिजवाएँ, वो आपके इन ऑफिस में विजिट करके, वॉक इन करके वहाँ भी वो डोनेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जी, माशाल्लाह। इसके साथ सर मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है, आप जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 60%+ जो है वो यूथ पे कंसिस्ट करता है, और अगर इनके पोटेंशियल को हम इस्तेमाल ना करें इस मुल्क की तरक्की के लिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़ाया करने वाली बात है इस रिसोर्स को। आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए हमारी यूथ को, स्पेशली जैसे इंडस काम कर रहा है, इस तरह के इदारों को सपोर्ट करने के लिए हमारी यूथ क्या कर सकती है?
2: जी, उसमें देखिए इंडस की जो बेस है ना वो यूथ से ही थी। एज हमारे फाउंडर जो बारी साहब हैं, डॉक्टर बारी साहब, उन्होंने कहा जब हमने स्टार्ट किया था तो बच्चों ने जो है 4 आना 8 आना दे के सपोर्ट किया था, और उस वक्त से ही स्टार्ट हुआ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ और एजुकेटेड भी हो गई है, और करेंसी हमारी देख लें, अब 4 आना 8 आना तो नहीं है। इसमें यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं वॉलंटियर वर्क करके। और सेकेंडली जो है, देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इंडस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक तो अवेयरनेस जाए और लोग इलाज करा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस इसके लिए फ़ंड रेज हो सके। और वी आर हेयर फॉर देम। आप जब भी हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको बताया हमारा UN नंबर है 04211111880। इसके अलावा कोई और सजेशन हो यूथ की, क्योंकि यूथ आजकल की जो है वो काफ़ी माशाल्लाह इनोवेटिव है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आती हैं ताकि हमें वो सपोर्ट कर सकें कॉज में। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस।
1: जी बिल्कुल, आजकल की यूथ ना सिर्फ बहुत एक्टिव है, बहुत वाइब्रेंट है और बहुत इनोवेटिव भी है, और नए से नए तरीके ढूंढते हैं चीज़ों को मार्केट करने के, और मेरा ख्याल है कि यूथ हमारे इस पैगाम को बहुत आगे तक पहुँचा सकती है। सो डेफिनेटली हमारी क्योंकि कोलैबोरेशन अब होने जा रही है इंशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क से, सो इसको बहुत आगे तक लेके चलेंगे मिलकर इंशाल्लाह। हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इंडस को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉज है। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा एक गैप है गवर्नमेंट सेक्टर से, अगर हम देखें गवर्नमेंट के लेवल पे उस तरह की फैसिलिटीज़ हेल्थ की प्रोवाइड नहीं की जाती जिस तरह की प्राइवेट इदारे दे रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट इदारे दे रहे हैं सर्विसेज वो इतनी कॉस्टली हैं कि वो कोई गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप जैसे इदारा, इंडस जैसे इदारा जो है इस सारे सिनेरियो में एक बहुत बड़ी नेमत है जी माशाल्लाह। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिलकर इंशाल्लाह इस कॉज को आगे बढ़ाएं और इस पर मज़ीद जितना हो सके हम एफर्ट्स करें और इसको हर एक गरीब तक, हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ इन चीज़ों को। जज़ाकअल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ मंगल के रोज़ 3:00 PM। अल्लाह हाफिज़।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक, मैं हूँ सादिया और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आई होप कि जो म्यूजिक ब्रेक थी वो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग रही होगी और हमने भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए मजीद भी अपने पास रख ली हैं। आमना, हम बात कर रहे थे टीचर्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहते हुए क्या सिर्फ डिग्री दी जाती है या आपको कुछ स्किल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं?
4: UCP में सिर्फ डिग्री नहीं दी जाती। इसकी एक एग्जांपल है कि जब मैंने 2017 में यहाँ पे एडमिशन लिया तो मुझे तो प्रेजेंटेशन भी नहीं देनी आती थी। सो UCP ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो टुडे इफ आई एम अ टीचर बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो डेफिनेटली टीचर्स का है, जिन्होंने हमें सिखाया और पॉलिश किया। प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स होते हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं है, टीचर्स हमें साइड बाय साइड गाइड करते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेके आनी है, कि आपको खड़ा होना कैसे है, आपको ड्रेसअप कैसे करना है, आपको बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है,
3: और आपकी जो सॉफ्ट लैंग्वेज है, आपकी बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, हर चीज पे हम आपको देखते थे। उस वक्त शायद आप लोगों को बहुत अजीब लगता था कि हमारी छोटी छोटी चीजों पर नंबर कट रहे हैं, लेकिन आई होप कि क्योंकि अब आप अपनी फील्ड में हैं तो आपको एहसास होता है।
4: नहीं, अभी आपने बात की तो मुझे आपकी ही क्लास की एक बात याद आ गई। आपने कहा कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपने प्रेजेंटेशन में वियर करने हैं, एंड दोज वर ब्लू एंड ग्रीन, और वो स्टिल अभी भी मैंने उसको कैरी किया है और मैं उसको फॉलो करती हूँ क्योंकि वो मैंने आपसे सीखा।
3: देयर वर वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर्स जो हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि जब आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो अपने आप को छुपाएं और अपना चेहरा और अपनी बात के अंदर वजन रखें, ताकि आप प्रेजेंटेशन सुनने वाला वो आपके कपड़ों में ना खो जाए, वो आपकी बात को सुने। सो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज अगर आपने याद रखी है तो मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी स्किल एनहांसमेंट पर काम होता था, जैसे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स यहाँ होती रही हैं, बहुत से इंटरनेशनल सिंपोजियम हमने करवाए, वेबिनार्स करवाए, आपका एक्सपोजर उनमें कैसा रहा? मतलब मोलेक्युलर की जो टेक्निक्स हैं, एक तो हम लैब में सीख लेते हैं, क्या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टेक्निक्स थी जो डिफरेंट टूल्स की जो कि आपने UCP में दौरान डिग्री सीखी और अब वो आपके बहुत काम आती हैं?
4: जी बिल्कुल, मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क नहीं किया यहाँ पे, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और हमारे अपने टीचर्स करवा रहे हैं, मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और मैंने बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर्स और टूल्स सीखे जो कि करंटली मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी रिसर्च में। इवन विद लेस रिसोर्सेज आपको समटाइम्स होता है कि मैं रिसर्च नहीं कर सकती, तो आई हैव दो स्किल्स जिसको मैं अप्लाई करके आज भी एक एक्टिव रिसर्चर या प्रोडक्टिव।
3: जैसे कि AI और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बहुत करीब हैं। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद, जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे सुपरवाइजर हमें कहते थे कि बायोटेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इवन कंप्यूटर साइंसेज, अब तो AI, और हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स के ऊपर हम स्टेम पे, स्टीम पे हम कितना काम करते हैं। तो ये आगे चल के आपको क्या लगता है कि अभी जो बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट हैं या जो चाह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ AI की तरफ जाएं, आपको लगता है कि सिर्फ AI या कंप्यूटेशनल स्किल्स को सीखने से हमारा वो गैप जो कि हेल्थ सेक्टर में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, क्या वो फिल हो पाएगा? अगर आप पास बिल्कुल बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज को पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई अच्छा इमल्जन नहीं है, और बेहतर ये है कि आप बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ें एंड देन कंप्यूटर्स को या AI को जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को साथ रिलेट करें और फिर उस गैप को फिल करें, तो क्या सिर्फ AI की तालीम लेना काफी है? क्या इसको इमर्जन करना साइंसेज के साथ जरूरी नहीं है या जरूरी है?
4: मुझे लगता है कि साइंसेज के साथ इसको कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जितने भी फील्ड्स हैं दे एक्चुअली रिप्लेस्ड, उनकी जॉब्स खत्म कर दी हैं AI ने, स्पेशली आप देखती हैं ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स के लिए लोग कैनवा या दूसरे टूल्स को यूज नहीं करते, दे जस्ट गो एंड कमांड देते हैं वो AI को और आपकी पिक्चर जो भी है वो बन जाती
3: है।
4: फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। सो इन कमिंग एरा जो है वो AI जो एक कंप्लीट डिग्री का नाम टाइटल दे दिया गया है, स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग टू रश, इनकी भी जॉब्स नहीं होंगी, तो हमें जो है वो इसको लिंक करना चाहिए विद द साइंसेस, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट जो है उसके पास एक ब्रेन है जो कि ह्यूमन ब्रेन है, जो कि कंप्यूटर के पास नहीं है। हम AI से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट उसको रीड करना और उसको अप्लाई करना एक ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। तो ये साइंस के साथ इसका लिंक जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी।
3: और मैं कहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का भी रिसेंट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम ना मैं आपको उसको भी उस पर थोड़ा बताऊँ और अपने सुनने वालों के लिए एक बड़ी जबरदस्त एक इन्फॉर्मेशन होगी। कि हमने जो फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट किया और विन किया यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंटरनल स्टूडेंट्स को ग्रांट देती है। ये एक यूनिवर्सिटी का एक खासा है कि हमारी यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो, उसको स्टूडेंट ग्रांट देती है। वो तकरीबन 1,00,000 तक आपको मिलता है आपका फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए। वो अभी हमने रिसेंटली उसको विन किया और हमारा प्रोडक्ट जो सा था वो मशरूम ग्रोथ था, और हमने उसमें अटैचमेंट AI टूल्स के

0: है, उसकी डिग्री है, एमएस फोरेंसिक साइंसेस है, एमएस बायोटेक्नोलॉजी है, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी बेसलाइन है जिसपे हम अपने स्टूडेंट्स को खुले दिल से वेलकम करते हैं, हमारा बीएस प्रोग्राम है जो कि टोटली इक्विप्ड है और आपको हर तरह के फैसिलिटेट करता है, और आप भी एक्चुअली बीएस टू एमएस उस लेवल के ऊपर गई। अब ना यहाँ मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जब एक दफा 4 साल बीएस कर लिया था तो फिर एमएस में दोबारा यूसीपी क्यों?
1: क्योंकि बीएस में मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सीखी, मुझे लगा कि कुछ स्किल्स रिमेनिंग हैं अभी भी, मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने होम ग्राउंड जाना चाहिए और उन स्किल्स को भी सीखना चाहिए।
0: तो आपने बाकी कंपैरिजन किया होगा और यूनिवर्सिटीज का?
1: मैंने अप्लाई किया हर जगह पे, जीसीयू में मेरा एडमिशन हो भी गया, बट स्टिल आई चूज्ड यूसीपी फॉर द एमएस। और जब मैंने फर्स्ट डे मेरा मास्टर्स का था और जस्ट आई एंटर्ड द गेट, और मेरे माइंड में एक गोल था कि लास्ट टाइम तो फ्यू पॉइंट से मैं मेडल नहीं ले सकी, इस दफा आई विल अचीव इट।
0: में आप का मेडल नहीं था?
1: मेडल नहीं था, सीजीपीए 3.7 था।
0: अच्छा अच्छा, तो आमना सीजीपीए इज मोर इम्पोर्टेंट या स्किल और जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मैटर करता है?
1: लर्निंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका सीजीपीए 1.92 रहे।
0: नहीं, हमें वो एक ब्रेकडाउन तो हमें रखना पड़ता है, जो कि एचईसी का कुछ रूल है जो कि हमने ग्रेजुएट अपने स्टूडेंट्स को उस पे करवाना होता है, वी आर यूजिंग दैट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और वो कुछ और एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते, तो आपने कहीं गोल्ड मेडल लेकर सिर्फ पढ़ा है या कुछ और भी एक्सपीरियंस किया, सोसाइटीज को दिया और सिंपोजियम देखे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, पेपर प्रेजेंट किए, या सिर्फ बस बुक पकड़ के बैठी रहती थी आप?
1: नहीं मैम, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो हमारे कॉन्फ्रेंसेज हैं वो अटेंड की, हजारा कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी मैंने अटेंड किया।
0: So you travel on the name of UCP.
1: Yes. Very good. And UCP भी जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस करवाती हैं और स्पेशली वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हैं, उसमें भी मैंने प्रेजेंट किया एज अ पोस्टर प्रेजेंटर और जो ओरल प्रेजेंटर होते हैं, और उससे मैंने बहुत ज्यादा गेन किया एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके इंटरनेशनली बहुत सारे लोग आए होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्या स्कोप है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर फर्दर।
0: और मेरा ख्याल है मैंने देखा है कि आपके मोस्टली जो रिसर्च पेपर्स हैं वो कोलैबोरेशन के ऊपर हैं।
1: Yes.
0: हमारे बहुत से यूसीपी के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेशन के ऊपर पेपर्स जो हैं वो लिखे, तो अब हम आगे चलकर इस पर भी हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो इंटरेक्शन है, इंटरनेशनल इंटरेक्शन जो यूसीपी ने आपको दिया, इसने आपको कितना आगे हेल्प किया, और क्लासरूम एनवायरमेंट यूसीपी में और लर्निंग एनवायरनमेंट आपका और भी मजीद हम हाईलाइट करेंगे। अब हम चलते हैं मजीद एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ये एक म्यूजिक ब्रेक है, दोबारा आपके कानों को एक सुर और लय आपके कानों तक टकराएगी, लेकिन हमारे साथ रहिएगा, हम आपके मुंतजर रहेंगे। सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामईन, और आई होप कि आपने जो म्यूजिक सुना वो अगेन आपके लिए बड़ा रिफ्रेशिंग होगा। मौसम भी आज बहुत बेहतरीन है, और अब हम तीसरे हाफ में अपनी मेहमान से कुछ मजीद वो बातें सुनेंगे जिससे अब ये सोचती हैं कि इनको दोबारा यूसीपी में दाखला ले लेना चाहिए, और अब हम इनको वेलकम करेंगे फॉर द पीएचडी। आमना, जब आप लोग यहाँ पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे?
2: नहीं, तब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे, और ऐसा कोई भी सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स या आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स ऐसी कोई चीज मुझे
1: तो इसका मतलब है कि यूसीपी ने एक फ्लाइट ली भी है और अब हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं इस चीज के ऊपर, और ये आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट ग्रांट्स अप टू 1 लाख रुपीस और एमएस या जो सीनियर फैकल्टी ग्रांट है अप टू 10 लाख रुपीस हम लोग ग्रांट भी करते हैं। एक मैसिव हंट होता है, पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट फाइनल ईयर के उसमें अप्लाई करते हैं, और टॉप 15 स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, और टॉप 10 जो फैकल्टी मेंबर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से अपने टीचर्स को इक्विप करने के लिए। सो ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप अब भी अपने इर्द गिर्द जो यूनिवर्सिटीज में देखती हैं, क्या स्टूडेंट्स को इंटरनल ग्रांट्स गवर्नमेंट में भी कहीं मिलती हैं?
2: बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप कहां देखते हैं कि वो आपको ग्रांट दे रहे हैं, और स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता। मे बी समहाउ फैकल्टी मेंबर्स को फंडिंग और इस तरह की ग्रांट
1: यूनिवर्सिटी तो नहीं देती है, वो तो उनको ग्रांट जो एजेंसीज है वहां से हंट करनी पड़ती है। एचईसी के ऊपर होता है हमारा ज्यादातर।
2: और मैं देखती हूँ काफी एक्टिवली पेज यूसीपी का कि यहाँ पे काफी सारा इनोवेटिव काम हो रहा है और काफी न्यू इनिशिएटिव है जो की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं,
1: और इसका मेरा सारा सेहरा जो है हमारी अपर मैनेजमेंट को जाता। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका इंटरेक्शन है, बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन है, हमारे यूसीपी के बच्चे और उन तमाम यूनिवर्सिटीज के बच्चों का मेंटल लेवल या उनका जो स्किल लेवल है, आप उसमें कोई डिफरेंस देखती हैं?
2: बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे अगर हम आउटसाइड यूसीपी देखें तो उनकी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, उनको मोटिवेट भी नहीं किया जाता कि कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, ओरल प्रेजेंट करें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो सबसे ज्यादा मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा कि उन्हें प्रेजेंट नहीं करना आता, कम्युनिकेट नहीं करना आता। तो यूसीपी में ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली और काफी चीजों को हाईलाइट किया जाता है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ 10 मार्क्स नहीं है बल्कि आपको ग्रूम किया जाता है, और साथ ही साथ स्किल्स पे वर्किंग की जाती है, सिर्फ डिग्री नहीं देते।
1: और आमना, आप मुझे भी बताइए, क्योंकि गोल्ड मेडल भी आपने लिया एमएस के अंदर और बीएस में भी आपका सीजीपीए बहुत हाई था, तो आपने बताया कि आप बिल्कुल ऐसा तो नहीं था कि किताबों में गुमी रहती थी, तो यहाँ हमारे पास 65+ एक सोसाइटीज का पूल है, तो आप कभी इन करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी?
2: यस, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी। निशा सोसाइटी यूसीपी में मैंने उसको ज्वाइन किया, और फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो हमारी सोसाइटी थी उसको मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा इन थी क्योंकि मेरा शौक था, तो मैंने साइड बाय साइड इन सब को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपने आप को।
1: इन चीजों ने आपके लर्निंग में कुछ आपकी मदद की?
2: बहुत सारे लिंक्स डेवलप होते हैं आपके, यानी कि आप अपने सीनियर्स के साथ इन टच रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बनता है, आपके ग्रुप्स होते हैं, और किसी भी तरह की हेल्प के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम।
1: और मेरा ख्याल है नेटवर्किंग इज अ की। सिर्फ कार्ड लेके बैग में रख लेना और कहीं जाके सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट कर देना कि हमने वहां गए थे और पिक्चर ली, रादर देन दैट आपका एक कन्वर्सेशन या एक आपका ऐसा लिंक डेवलप हो जाए जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करे, ठीक है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में खासतौर पर, हमारा स्टूडेंट्स को एक बड़ा डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपकी करियर डेवलपमेंट की जाती है। वहां आपकी लिंक्डइन की सीवीज कैसे बननी है, लिंक्डइन की पोस्ट कैसे लगानी है, आपने सोशल मीडिया को, आपने प्रोफेशनल मीडियाज को कैसे हैंडल करना है, आप इस पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी कि साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को जो हमारी इस तरह की प्रोफेशनल साइट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टिकटॉक्स और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेसबुक और अदर चैनल्स, बट दोज यू नो द प्रोफेशनल साइट्स लाइक लिंक्डइन है, ट्विटर है, जहां से आप बाहर के प्रोफेसर्स के साथ लिंकअप हो जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स वहां से हंट कर सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने या फिर करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसमें आपको कितना हेल्प आउट किया?
2: टीचर्स काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकल के आप इन प्रोफेशनल जो आपकी एप्स हैं उनको अपने फोन में इंस्टॉल करें और इनको यूज करें फॉर योर प्रोफेशनल करियर. अगर सच पूछें तो जो मैंने अपनी जॉब हंट की वो मैंने लिंक्डइन से ही की. तो आपका लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आजकल सीवी से पहले जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या जिसके पास भी एचआर पे आपकी सीवी जाती है वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखते हैं.
1: दिस इज समथिंग जो आप बहुत प्रिवेल कर रहा है. सो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टैंडिंग इन द सोशल प्रोफेशनल सोशल मीडिया.
2: यस, तो आपकी वो प्रोफाइल जो है वो अप टू डेट रहनी चाहिए ऑल द टाइम. और मैं स्टूडेंट्स को काफी इनकरेज करती हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने कोई एक सर्टिफिकेट भी अचीव किया है मस्ट पोस्ट ऑन लिंक्डइन. ये आपकी अचीवमेंट है. जब तक आप खुद को खुद एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपको कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा.
1: आम ना एक जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चों के जहन पे एक बोझ रहता है कि अगर 2 साल की डिग्री है तो वो 4 साल तक जा रही है, 3 साल तक जा रही है, 4 साल की डिग्री है तो वो भी लटकती जा रही है. कुछ स्टूडेंट्स का अपना कसूर होता है लेकिन कहीं गैर जरूरी तौर पर यूनिवर्सिटीज भी लटका देती है. यूसीपी के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिग्री टाइम पे खत्म हो रही थी, आपकी डिग्रीज कैसे खत्म हुई, आपके क्लास फेलोज जो आपके साथ थे दे ऑल ग्रेजुएटेड ऑन टाइम या कुछ रह गया?
2: यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इज आउट क्लास. ऐसा नहीं है कि आपका जिस दिन वाइवा डेट है और आपका वाइवा किसी और दिन कंडक्ट हो रहा है. टाइमलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और आपकी डिग्री अगर 4 साल की है तो वो विद इन 4 ईयर्स ही कम्प्लीट होगी. सुपरवाइजर अपने जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं स्पेशली वो कोई भी ग्रज बेसिस पे स्टूडेंट का थीसिस जो है वो प्रोलोंग नहीं करते हैं. वो टाइमली ही फिनिश होता है और कॉन्वोकेशन भी आपकी सेम डे पे होती है.
1: तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनलिज्म इज द की ऑफ दिस डिपार्टमेंट.
2: यस,
1: और वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इसे इंटरकेट किया है और अपने आप आगे करियर के अंदर इसको भी लेकर चल रहे हैं. आमना थोड़ी सी आप हमें ये भी आप बताइए कि जब हम इतना पढ़ रहे होते हैं, इतना इंटेंसिवली हम लोग चल रहे होते हैं, अभी भी हम छोटी छोटी ब्रेक्स अपने सुनने वालों को म्यूजिक ही दे रहे हैं. सो हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने लिए एक लेयर टाइम निकाले और किताबों से हटकर भी इस दुनिया को देखे? और यूसीपी में ऐसी बहुत सी जगह आई नो कि जब बारिश होती है तो हमारी सीनरी और होती है. एक बहुत खूबसूरत सी एक हमारी जो सी वाइब है हमारे पूरे कैंपस की और बहुत अच्छी जगह है जहां बैठ के जो सा कर सकते हैं. तो यूनिवर्सिटी की पूरी जो पूरी यूनिवर्सिटी है वहां आपका बहुत ही पसंदीदा स्पॉट क्या था और लेयर टाइम आप यूनिवर्सिटी में क्या करती थी?
2: फूड स्ट्रीट एक अच्छी जगह थी क्योंकि एक ओपन है और आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग विद अ कप ऑफ टी आप एंजॉय करते हो. वो मुझे बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ उस चीज को. और लेयर टाइम टू कम्युनिकेट विद फैकल्टी, अपने टीचर्स के साथ. इतने फ्रेंडली फैकल्टी मेंबर्स हैं कि आप कभी भी उनके ऑफिस में जाके बैठ जाए एंड दे एक्चुअली ऑफर यू टी. तो ये बहुत अच्छा टाइम है.
1: इज लाइक अ टॉक टू रिमेंबर फॉर द लाइफ टाइम.
2: यस, और साथ में आप रिसर्च डिस्कशन कर सकते हैं, करियर सजेशन ले सकते हैं.
1: कितनी हर्डल होती थी टीचर को अप्रोच करने में इधर?
2: कोई हर्डल नहीं है. टीचर
1: चलते चलते बैठ जाना और मेरा खाली ये हमने यहाँ देखा है. हम चलते चलते बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं.
2: टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग. वो सब स्टूडेंट्स को जो है वो अपने स्टूडेंट समझते हैं और ऑन करते हैं उस चीज को. तो इस तरह की कोई हर्डल नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो बात करने से भी डरे या वो टीचर को अप्रोच ही ना कर सके. स्टूडेंट्स कैन गो एट एनी टाइम.
1: और मेरा ख्याल है ये जो हमारा, क्योंकि हम लोग भी ये कहते हैं एज अ टीचर, मैं अगर आपको बताऊँ कि हमारे अपने बच्चों से ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ गुजरता है. दिन के 8 से 9 घंटे हम डेडिकेटेडली सिर्फ आप लोगों के लिए होते हैं. अब जब हमारे ऑफिस में आते हैं तो मेरा ख्याल हम आपको ओपन के साथ आपको वेलकम कर रहे होते हैं. सो ये जो तरबियत का अमल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. उस्ताद कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जो आपके जहन के ऊपर तासुर छोड़ती है. आवाज़ की टोन कैसी थी, मुझे कितना वेलकम किया, कहाँ डांट पड़ी. और कई दफ़ा तो फिर अब तो हमें भी अपने टीचर्स की डांट याद आती है कि वो अच्छा किया वहाँ से झड़क दिया, क्योंकि अगर हम वो कर रहे होते तो आज ये ना कर रहे होते. तो आपका कोई यादगार लम्हा जब आपको उस वक्त लगा हो कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन अब क्योंकि आप खुद उस्ताद हैं तो अब आपको लगता है कि नहीं वो ठीक मुझे टोका था?
2: मुझे अभी भी याद है कंप्यूटर साइंस के टीचर हमें आके टास्क देते थे, यू हैव जस्ट हाफ एन आवर टू कम्प्लीट दिस एंड सबमिट विद इन क्लास टाइम. अब उस टाइम पे हम बैठ के उस टीचर को जो है वो ब्ला ब्ला बोल रहे होते थे कि ये क्या है,
1: हम रोबोट्स हैं, इतनी जल्दी करेंगे ये. तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था,
2: चैट जीपीटी भी नहीं होता था, और इतने कम टाइम में हम कैसे सीवी बना सकते हैं. बट मुझे अब ये चीज रियलाइज होती है कि वो जो टीचर थे उन्होंने हमें स्किल सिखा दी कि हमें विद इन टाइम फेज वो टास्क असाइन करके हमने जब उसको कंप्लीट किया प्रेशर के साथ तो उसने हमें एक.
1: इसका मतलब है जो उस्ताद आपको चैलेंज देता है उस वक्त तो आपको शायद वो बुरा लग रहा होता है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन आपको वही उस्ताद कम वक्त में बहुत सा काम करना सिखा देता है. तो ये भी हमारे सुनने वालों के लिए है कि यूसीपी का और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कल्चर है कि हम बच्चों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहते हैं ताकि वो इन चैलेंजेस के साथ एक नई चीजों के साथ आए. एंड आई नो कि हमारे बच्चे वॉक इन करते हुए भी आइडियाज के साथ आ जाते हैं कि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, क्या हम यहाँ कर सकते हैं? सो हम कहते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाए बैठ जाए, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं या इसको एज इट इज लेके चलते हैं. जैसे आई रिमेम्बर कि कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने प्लास्टिक बॉटल्स का कुछ करना है और उन प्लास्टिक बॉटल्स को हमने चेंज करना है किसी ऐसी चीज के अंदर जो कि वायबल हो. तो उसमें ये हुआ कि लास्ट ईयर 14 अगस्त पे हमने यूनिवर्सिटी ने और तखलीक बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर ने, आई रिमेम्बर यासरवान वॉज वेरी मच यू नो डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट, और हमने ISP इंटरनेशनल के साथ मिलकर यहाँ एक रिवर्स वेंडिंग मशीन जो सी है उसको भी रखा, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग मर्ज करें, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए. हमारे अपने स्टूडेंट्स रिवर्स वेंडिंग मशीन्स के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स को डालते हैं और उसका जो क्रश है उसके थ्रू हम ईंटें बना रहे हैं जो कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के अंदर या हमारी जो यूनिवर्सिटी का एक कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके थ्रू हम लोग बच्चों के दिए हुए कचरे से एक नई चीज बना के यूनिवर्सिटी को हम दे रहे हैं. दिस इज समथिंग जो कि हम लोग करना चाह रहे थे, और ये मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से चला भी रही है. तो अब हमारे सुनने वालों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? आपकी यूनिवर्सिटी है, आप इसे ऑन करती हैं, आज आप मेहमान हैं, कल आप स्टूडेंट थी, आज आप खुद उस्ताद हैं. सो आपकी एक ऑनेस्ट रिव्यू के अंदर हाउ इज एक्सपीरियंस जो कि जो बच्चे नहीं ले रहे उन्हें लेना चाहिए?
2: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे मैंने भी स्टार्ट में भी कहा कि मैंने बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी किया, तो अगर आपका एक एक्सपीरियंस बुरा रहे तो आप नेक्स्ट रिस्क नहीं लेते. तो मैंने खुशी के साथ मास्टर्स में एडमिशन लिया क्योंकि मेरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट UCP के साथ है. तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और मैं आज जो भी हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ, और अपने जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी उसमें जितने भी टीचर्स हैं उन सब का कहीं ना कहीं रोल है.
1: बहुत शुक्रिया आमना इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए. और क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अब भी हमारे एडमिशंस तो ओपन है, BS बायोटेक्नोलॉजी, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS फोरेंसिक साइंसेस, MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी और PhD इन बायोटेक्नोलॉजी. सो इन तमाम तर डिफरेंट आस्पेक्ट के साथ हम लोग आपको वेलकम भी करना चाह रहे हैं. एडमिशंस भी ओपन है, हमारे एडमिशन जो सेंटर है उससे आप कभी भी राबता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप रीच आउट कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप नंबर्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, और आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन पेजेस पे भी मिल जाएंगे. और हम यही चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एक वाइब है, जो एक्सपीरियंस है या जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हम तमाम लोगों में डेवलप करें. ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं तो हम आपको कह रहे हैं, हम इसका हिस्सा मेरी जात पिछले 12 साल से इस इदारे से मुंसलिक है, और आप किसी इदारे में इतना लंबा अरसा तभी गुजारते हैं जब इदारा खुद आपको माँ की तरह लेकर चल रहा होता है. तो हमारे जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं और हम पूरी उनको ऑन भी करते हैं, उनकी ऑनरशिप भी लेते हैं, अभी नहीं जब वो हमारे लमनाए हो जाते हैं या यहाँ से चले जाते हैं वो फिर हमारे और ज्यादा अपने हो जाते हैं. और जैसे आज आप हमारा फखर है आमना, इंशाल्लाह हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे नए आने वाले बच्चे भी हमारा ऐसा ही फखर बने और बहुत सी आमना आबिद हमारे सामने आए. बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, और सुनने वालों को आमना आबिद और सादिया ज़िया की तरफ से मोहब्बत भरा खुदा हाफिज, और इंजॉय भी कीजिए और UCP को विजिट जरूर कीजिए. बहुत शुक्रिया.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन,
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।